0: और मैं पाचू
1: इटीनो और रेडियो पियम चुन के वेर क्वारो
0: पियम चुन के वेर क्वारो
1: बीमार मैं पाचू
0: बीमार मैं पाचू
2: यू आर लंग यू बी डू टेल आ लोका कॉल मी
1: इटीनो और रेडियो.

0: और मैं पाजू
1: ईटी विनो और रेडियो ईटी विनो काई और रेडियो के कैन ईटी विनो और रेडियो।